साहब जी, जब दरख्त जवान हो तो मैं बूढ़ा आदमी उसकी काट छांट नहीं कर सकता। माली बाबा ने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा, जब पौधा नाजुक हो तभी उसकी शाखें तराशना आसान होता है, पीछे तने पर कोई निशान तक नजर नहीं आता। माली बाबा ने अपना फलसफा बयान करते हुए कहा, ठीक है करमू बाबा, लेकिन इस बात का मेरे मसले से क्या ताल्लुक? मैंने कुछ उकताहट से सवाल किया। अच्छा ठहरे, पहले मैं आपको अपना तारुफ तो करा दूं। मेरा नाम अरमगान आलम है, शहर में अच्छी नौकरी है। मसला यह है कि मेरा बेटा खालिद अरमगान मेरी बात नहीं मानता और सुनी अनसुनी कर देता है। उम्र उसकी 16 साल के लगभग है। लॉन में खड़ा था कि वो माली बाबा के सामने मुझसे बदतमीजी करता हुआ बाहर चला गया। माली बाबा, खालिद को मैंने क्या नहीं दिया? अच्छा खाना पीना पहनना, अच्छी तालीम, हर सहूलत दी है उसे मैंने। मैंने अपनी बात जारी रखी, साहब पौधा जब छोटा होता है तो उसे खाद और पानी के साथ साथ तराश खराश और तेज हवा और धूप से भी बचाव की जरूरत होती है। आपने खालिद साहब को खाद और पानी तो खूब दिया, लेकिन उनकी तराश खराश से बेपरवाह रहे। इधर आए साहब। माली बाबा मुझे एक दरख्त के पास ले गया जिसका तना बिल्कुल सीधा और खूबसूरत था। देखें, इस तने की खूबसूरती का ताल्लुक उस काट छाट के अमल से है जो मैं इसके बचपन में करता था। जो शाख इसके तने पर उगती उसे प्यार से हटा देता। और आज देखें इसका तना कितना सीधा और खूबसूरत है। माली बाबा ने अपना तजर्बा पेश करते हुए कहा, साहब जी आप मेरी बात समझ रहे हैं? माली बाबा ने मुझे देखते हुए कहा, जी जी आप बात करते रहें। मैंने फौरन कहा, बच्चे भी नाजुक पौधे के मानिंद होते हैं। 10-12 साल का वक्त महज खाद पानी का नहीं बल्कि तराश खराश और काट छांट का भी है। साथ साथ माहौल की तेज धूप और तेज हवा से भी उन्हें बचाना है। और अगर ये काम हम 12-13 साल के बाद शुरू करेंगे तो तने पर उसके निशान सब होंगे और दरख्त अपनी खूबसूरती खो बैठेगा। माली बाबा ने अपनी बात मुकम्मल की। जी माली बाबा, अब तो खालिद 16 साल का हो गया है, अब क्या करूँ? मैं अपने मौजूदा मसले का हल चाहता था। उसे अपने आप से मानूस करें, जब वो आपके सामने आए तो हंसकर बात शुरू करें, जब वो घर आता है आपसे डर कर फौरन अपने कमरे में चला जाता है। जो खराबी 16 साल में पैदा हुई है उसे 16 दिन में ख़त्म करने की कोशिश ना करें, वरना तना चटक जाएगा। माली बाबा कैसी तजर्बे की बात कर रहे थे। जब भी बात करें पहले उसकी खूबियों की भी तारीफ करें, फिर एक आध मुख्तसर हल्का फुल्का जुमला नसीहत का बोलकर उसे तूल ना दें और गुफ्तगू का खात्मा भी मुस्कुराहट के साथ करें। साहब जी, मिट्टी की गोदी आहिस्ता आहिस्ता लेकिन मुसलसल की जाती है, तब जाकर जरखेज मिट्टी बाहर आती है। माली बाबा की बात ने मेरे सर के ऊपर से बोझ उतार फेंका था। इतने में खालिद घर में दाखिल हुआ और सलाम करके तेजी से कमरे में जाने लगा। खालिद बेटा, आपकी तबीयत कल कुछ खराब थी, अब कैसी है? मैंने मुस्कुराते हुए सवाल किया। जी अब्बू, अब बेहतर है। खालिद ने हैरत से मुझे देखते हुए तेजी से जवाब दिया। बेटा अपना ख्याल रखा करो, मैंने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। और मैं माली बाबा का दिया हुआ सबक सीख चुका था कि 16 साल की खराबी 16 दिन में ठीक नहीं हो सकती और आहिस्ता आहिस्ता लेकिन मुसलसल की हुई गोदी ही जरखेज मिट्टी बाहर निकालती है। मैंने कहीं पढ़ा था, यतीम वो बच्चा नहीं है जिसे उसके वालदेन दुनिया में तनहा छोड़ गए हों। असल यतीम तो वो हैं जिनकी माओं को तरबियत औलाद से दिलचस्पी नहीं है और बाप के पास उनको देने के लिए वक्त नहीं है। बच्चों को बुराइयों के सैलाब से बचाने के लिए मौजूदा दौर की औरत को खुसूसन अपने औकात कार, घर के निज़ाम, बच्चों की दिलचस्पी और अपनी लापरवाहियों पर तवज्जो देनी होगी और उस सकाफती जलगार का मुकाबला इस्लामी रंग को अपना कर ही किया जा सकता है। रंग उसी कपड़े पर अच्छा चढ़ता है जिसका अपना कोई रंग ना हो। अपनी औलाद और घर के अफराद का अपने रंगों से निकाल कर अपनी औलाद और घर के अफराद का और रंगों से निकाल कर

सिबकत उल्ला में रंगना ही इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए काफी होगा इंशाअल्लाह। कम्युनिटी के एक रुकन की हैसियत से आपको अपने शहरी हक के इस्तेमाल की तरगीब दी जाती है। अगर आप 25 सितंबर तक 18 बरस या उससे ज्यादा उम्र के हैं और हांगकांग के मुस्तकिल बाशिंदे हैं जो मामूल के मुताबिक हांगकांग में रहायश पजीर हो तो आप वोटर के तौर पर रजिस्ट्रेशन के अहल हैं। आप 2 जून तक अपनी दरख्वास्त आईएम स्मार्ट के जरिए बआसानी मुकम्मल कर सकते हैं। दरख्वास्त फॉर्म ऑनलाइन, ईमेल, डाक या फैक्स के जरिए भी जमा कराया जा सकता है। ये फॉर्म आईएम स्मार्ट या vr.gov.hk के अलावा तमाम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज, सरकारी रिहायशी इमारतों के मैनेजमेंट ऑफिसेज और रजिस्ट्रेशन एंड इलेक्टोरल ऑफिस में दस्तियाब है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं या मौजूदा वोटर हैं तो आप आईएम स्मार्ट या vr.gov.hk के जरिए अपनी रजिस्ट्रेशन की तफसीलात चेक कर सकते हैं। आप अपनी रिहायशी मालूमात और राबता तफसीलात भी आईएम स्मार्ट के जरिए अपडेट कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए मुलाहजा कीजिए vr.gov.hk या रजिस्ट्रेशन एंड इलेक्टोरल ऑफिस की हॉटलाइन 2891-1001 पर कॉल करें। आप मकामी सपोर्ट सर्विस सेंटर्स भी जा सकते हैं। आज ही कदम बढ़ाएं, अपनी कम्युनिटी के वोटर बनें।

खता और बेवकूफ़ी का फ़र्क। गलती को दुरुस्त करने का मौसर तरीन तरीका उसे ईमानदारी से तस्लीम करना और फिर उसका तदारुक करना है। अगर गलती को तस्लीम ना किया जाए तो फिर वो बेवकूफ़ी बन जाती है। अक्लमंद और बेवकूफ़ का फ़र्क यहीं से पता चलता है। गलती दोनों से होती है, मगर अक्लमंद गलती तस्लीम करके तायब हो जाता है, जबकि नादान गलती पर जम जाता है और अपना दिफा शुरू कर देता है। यहाँ से नादानियों का नया सिलसिला शुरू हो जाता है। वो बेवकूफ़ी के मैदान में घर बना लेता है और वहीं का होके रह जाता है, यानी गलती दोनों से हुई, एक गलती करके निकल गया, दूसरे ने उसी मैदान में डेरे डाल दिए। ये खूबसूरत मुख्तसर तहरीर थी तारिक हनीफ की, और अब एक भूला बिसरा गीत अहमद रुश्दी और माला की आवाज़।

0: अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सुहेल अहमद अजीजी, आप सुन रहे हैं हांगकांग की शाम अपने मेजबान आबद अली बेग के साथ।
1: एक दही भल्ले छोले चाट की दुकान पर चाट की अकसाम की फहरिस्त बम्बई कीमत आवेदन थी, जिस पर लिखा था सादा चाट 50 रुपए, स्पेशल चाट 60 रुपए, एक्स्ट्रा स्पेशल चाट 70 रुपए, डबल एक्स्ट्रा स्पेशल चाट 80 रुपए और संडे स्पेशल चाट 100 रुपए। सोचा कि रोजाना ये मुख्तलिफ किस्म की चाट का जायका चखना चाहिए। 3-4 दिन में एहसास हुआ कि जायका तो एक ही है, कोई फर्क नहीं। दुकानदार से पूछा कि भाई ये क्या माजरा है, तो वो बोला कि सादा चाट ऐसे ही प्लेट में दे दी जाती है, स्पेशल चाट चमचा धो के दी जाती है, एक्स्ट्रा स्पेशल चाट चमचा और प्लेट धो के दी जाती है, और डबल एक्स्ट्रा स्पेशल चाट इन सब चीजों के साथ साथ मैं अपने हाथ भी धो के देता हूं। उनसे पूछा भाई ये संडे स्पेशल चाट में क्या होता है, तो बोला संडे यानी इतवार को मैं खुद भी नहा कर आता हूं।

ये भी खजाने मेरे। आज एक और बरस बीत गया उसके बगैर, जिसके होते हुए होते थे जमाने मेरे। काश तू भी मेरी आवाज कहीं सुनता हो, फिर पुकारा है तुझे दिल की सदा ने मेरे। काश तू भी कभी आ जाए मसीहाई को, लोग आते हैं बहुत दिल को दुखाने मेरे। काश औरों की तरह मैं भी कभी कह सकता, बात सुन ली है मेरी आज खुदा ने मेरे। तू है किस हाल में ऐ जूद फरामोश मेरे, मुझको तो छीन लिया अहदे वफा ने मेरे। चार अगर यूं तो बहुत हैं मगर ऐ जाने फराज, जुस तेरे और कोई जख्म न जाने मेरे। जुस तेरे कोई भी दिन रात न जाने मेरे। तू कहाँ है मगर ऐ दोस्त पुराने।

0: आवाज की दुनिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अताउल्ला खान सखेलवी। आप सुन रहे हैं हांगकांग की शाम अपने मेजबान आबिद अली बेग के साथ।
1: अल्लामा जलालुद्दीन रूमी से चंद सवालात पूछे गए, जिनके उन्होंने बहुत खूबसूरत मुख्तसर और जामे जवाब अता फरमाए, जो कुछ यूं हैं। जहर किसे कहते हैं? हर वो चीज़ जो हमारी ज़रूरत से जायद हो वो हमारे लिए जहर है, ख़ाह वो कुव्वत व इक्तदार हो, दौलत हो, भूख हो, अनानियत हो, लालच हो, सुस्ती व काहली हो, मोहब्बत हो, अज़्म हिम्मत हो, नफ़रत हो या कुछ भी हो। पूछा गया, खौफ किस शय का नाम है? गैर मुतवक्का सूरत हाल को कबूल न करने का नाम खौफ है। अगर हम गैर मुतवक्का को कबूल कर लें तो वह एक एडवेंचर, एक मुहिमजुई में तब्दील हो जाती है। सवाल किया, हसद किसे कहते हैं? दूसरों में खैर और खूबी को तस्लीम न करने का नाम हसद है। अगर हम इस खूबी को तस्लीम कर लें तो एक रश्क और इंस्पिरेशन बनकर हमारे लिए एक महमेज का काम अंजाम देती है। सवाल हुआ, गुस्सा किस बला का नाम है? जो उमूर हमारे काबू से बाहर हो जाएं, उनको तस्लीम न करने का नाम गुस्सा है। अगर हम तस्लीम कर लें तो अफ़ दरगुजर और तहम्मुल उसकी जगह ले लेते हैं। पूछा, नफ़रत किसे कहते हैं? किसी शख्स को जैसा कि वो है तस्लीम न करने का नाम नफ़रत है। अगर हम गैर मशरूत तौर पर उसे तस्लीम कर लें, कबूल कर लें, तो उसे मोहब्बत कहेंगे।